0: मंडे को कीमा भुना हुआ, ठीक है, सारे लिख लें जेडे जेडे सुन रहे, अब्बल तो सुनी त्रै रहे ने वैसे। ते ट्यूसडे नु जेड़ा ना कर लो आलू मटर, थोड़ी सब्जी सब्जी भी होनी चाहिए है। ते वेनसडे नु कर लो ना बुध नु, बुध काम शुद्ध, उस दिन होता है तंदूरी चिकन ओवन
1: मुर्ग, वो भी बगैरत वाला,
0: बगैरत मुर्गा, बगैरत मुर्गा पकाओ उन ओवन च कस दो ते 210°C ते पकाओ फ्राइडे जो है ना वो वीकेंड का दिन, उस दिन शाम को अच्छा डिनर होना चाहिए क्योंकि अगले दिन लोग नींद शीन अपनी पूरी करते हैं, तो उस दिन पका लो कोई कढ़ाई गोश्त पुलाओ जे।
1: हाँ
0: देखो मैं नोट करो, मैं पुलाओ कह रहे हैं, उबले चावल नहीं पुलाओ।
1: मैं भी दस दे ना पुलाओ विच पवे की मुर्गी पवे कोई उदे च
0: ते नहीं, ए आप डिसाइड करो मुर्गी पालन गोश्त पालन मत,
1: लड़ाई तो फिर हो गई ना
0: इधर, लड़ने वाली केड़ी गल यार, जद जुमे बुध वाले दिन तुसी बगैरत मुर्गा खादा है ते फिर ना जुमे वाले दिन इदे विच ना ओ हसीन गोश्त पा दियो, गल मुक्गी ना, लड़ाई ना करो यार, खान पीन की चीज़ लड़ाई करनी, यही तो एक टाइम होता है बैठ के बंदा अच्छे तरीके से फैमिली के साथ एंजॉय करता है, मुंह में वाला डालता है, इधर खट्टा मीठा कोई साथ पीता है, डकार मारता है, ठीक है जी,
1: ठीक है।
0: सैटरडे को आप कर ले जी, वो भी वीकेंड का दिन है, अक्सर लोगों के घर मेहमान आते हैं, कुछ फैमिलियाँ गैदरिंग अपनी करती हैं ये वो, तो उस दिन आप कर ले कोई ना अपनी नेबर कंट्री से एक्सपायरिंग इंस्पिरेशन ले लें,
1: वो है
0: अफगानी खाना हो जाए कोई काबली पुलाव। अच्छा
1: नेपर मैंने कहा कोई जर्मनी होएगा कोई स्वीडन होएगा।
0: ओ नहीं नहीं ऐसे पाकिस्तानी लोगों की गल कर रहे हैं, पाकिस्तान का नेबर कौन है, अफगानिस्तान हो गया, इंडियन हो गया, मतलब जिस तरह का, लेकिन इंडियन और हमारा खाना तो काफ़ी मिलता जुलता है ना, अफगानियों की कुछ डिशें हैं ना थोड़ी सी अलग है, जिस तरह काबली पुलाव हो गया, दम बुख्त हो गया, के ना उसका दम बुख्त कम बख्त के सी
1: कम बख्त क्या क्या बात है,
0: के ना उसका
1: क्या बात,
0: यही है ना दम बुख्त के सी, और जो जिंदा बकरा पा दें तो पूरा दिन बेचारा पिया रहता है, तो ढक्कन खोलो फिर बाहर आ कहता
1: जिंदा नहीं,
0: ओ यार वही बकरा बिच पाते हैं फिर ढक्कन खोल देने, बाहर आ कहता खोल दे हूँ मेरा साह घुटिया गया बाहर आठ दे मैं वो गोश्त जरा है ना बिल्कुल जबरदस्त हो जाता निकलता, वैसे मेरे जी आइए बार बै स्किन स्किन समेत चलो हफ्ते वाले दिन ये कर ले, और सैटरडे को जो है ना संडे जो है ना वो सबसे आसान दिन है, वो मैं पक्का रखूंगा, सुबह चाह ते रस ते रोजा,
1: चार चार चार नस ते रोजा,
0: नहीं नहीं चार नस नहीं चार चाह ते रस ते उस तो बाद रोजा।
1: अच्छा
0: ए हुण पूरे हफ्ते दी सफाई भी ते करनी है ना फिर अगला हफ्ता तैयार हो
1: जाएगा, चाह नस ते रोजा,
0: वाह वो ते बीवी दी मर्जी, चाह नस करे या चाह रस करे।
1: अच्छा वैसे ये बात मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है, ये सिर्फ बीवी नहीं खामद भी घर में खिदमत गुजार खाना बनाते हैं।
0: मैं कहता हूँ खामदों से अच्छा कुक कोई नहीं है, लड़कों से
1: जी,
0: मर्दों से
1: जी,
0: कसम से, क्योंकि हम जब किचन में अबल तो जाते नहीं है लेकिन जब चले जाए ना तो सही दिल से खाना बनाते हैं, जायका बड़ा हमारे खाने में, ये तो चाहे लेडीज माइंड करें या ना करें कोई मसला नहीं, आई डोंट केयर, लेकिन जो मर्द किचन में जाता है ना कुछ अच्छा पका के निकलता है, इसमें तो कोई शक नहीं।
1: लग रहा तुहाडे मुंह च पानी आ गया
0: है जी,
1: तुहाडे मुंह च पानी आ गया,
0: पानी नहीं मेरे मुंह ते नदियां बह रही हैं दरियाए नील मेरे मुंह च लंघ रहे।
1: अच्छा बाबा फूका मोकल फिर आ गया जी,
0: अल्लाह खैर करे मोकल, मेरे ख्याल सच्ची मुझे दो रेड बुल मार के आया किधर पार के तो नहीं बूटी पीती,
1: इस मरतबा ना कोई शायरी ना कलाम इस तरह की नहीं कोई बात, खबर लेके आया,
0: खबर लेके आया,
1: और वो मुअक्कल कहता है ये जरा ना पढ़ के सुनाओ,
0: अल्लाह खैर करे।
1: लिखा है गुजरांवाला सोसाइटी डेनमार्क के माहाना मीटिंग, 2 साल कारकर्दगी का जायजा।
0: 2 मिनट दोबारा रिपीट करिए।
1: गुजरांवाला सोसाइटी डेनमार्क की माहाना मीटिंग, 2 साल कारकर्दगी का जायजा।
0: माहाना मीटिंग ते 2 साल दी जायजा, ये क्यों है फिर, पहले एवं मिलते रहे एक दूसरे नू
1: उदू खाबे खा।